0: क्या?
1: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ?
0: क्यों?
1: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है बता दूं क्या?
0: क्या?

मैंने सुना है कि जब लोग प्रे करते हैं या जोर से हंसते हैं, रोते हैं या फिर किस करते हैं तो आंखें बंद हो जाती हैं। क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ दिल से महसूस की जाती हैं।